0: ना काम में साइलो कर रहे हैं साइलो आप रहे
1: Анжела Аветисян, Авели Барцев.